फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और वो धुआं था, तो उसने उससे और ज़मीन से फरमाया कि दोनों आओ, खा खुशी से खा ना खुशी से। उन्होंने कहा कि हम खुशी से आते हैं।

और रात और दिन और सूरज और चांद उसकी निशानियों में से हैं। तुम लोग ना तो सूरज को सजदा करो और ना चांद को, बल्कि अल्लाह ही को सजदा करो जिसने उन चीजों को पैदा किया है, अगर तुमको उसकी इबादत मंजूर है।

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फट कर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.

criança.

चाहूँ मैं तुझे दिल से मिटाना, दिल ढूंढे एक रोज बहाना, याद करे तुझे बन के दीवाना, मुश्किल है दिल को समझाना। जब से मिला है दर्द जुदाई, कोई खुशी मेरे पास ना आई, करता रहा जिस गम से गिला मैं वो।

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101.

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वजीर आजम ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को वाहिद काबिले अमल रास्ता करार दिया है। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर मुतालबा किया है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की मनसूबाबंदी, सहूलतकारी और अमल दरामद में इस्तेमाल होने वाली दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों और तरबियती नेटवर्क्स के खात्मे के लिए काबिले एतमाद और पायदार इकदाम। मारूफ पाकिस्तानी फिल्मी अदाकार यूसुफ खान की 70वीं बरसी आज मनाई जा रही है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Sucks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: क्या कह रही थी तुम? एक बार फिर बोलो।
2: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर। एक दिन, एक

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: कुछ ऐसी मोहब्बत की आवाज ऐसा फिर बदल
1: बिग स्टाइल म्यूजिक FM 101.

Alrighty, assalamu alaikum Pakistan and assalamu alaikum to all the Lahorians, to all the Punjabians, to all the Pakistanis, and of course to all the sweetheart listeners of FM 101. This is your dost, your host, RJ Mahvish Zaidi. कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, इन्जॉय करें हमारे साथ इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को, इस खूबसूरत से वेदर को, इस खूबसूरत से मौसम को जनाब, क्योंकि मौसम बदल रहा है कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा, और हम बढ़ रहे हैं सर्दियों की जानेब आहिस्ता आहिस्ता। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हमेशा से एक खूबसूरत बात के साथ, और जनाब मेरे पास है कुछ इस तरह से। हकीम लुकमान से लोगों ने पूछा कि आपने अदब किससे सीखा, तो जानते हैं दोस्तों हकीम लुकमान ने क्या जवाब दिया। हकीम लुकमान ने कहा कि मैंने बेअदबों से अदब सीखा, उनके जो फाल यानी जो काम मुझे बुरे मालूम हुए, बुरे लगे, मैंने उसे करने से परहेज़ किया, मैंने उन्हें अंजाम देने से गुरेज किया। तो यकीनन मैंने बुरे लोगों से अच्छी बातें सीख ली। बुराई में अच्छाई ढूंढना भी जो होता है वो बाकमाल लोगों की सलाहियतों में से एक सलाहियत होती है जनाब, और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। और मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि प्रोग्राम में कुछ ऐसी बात को शामिल किया जाए, स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ को रखा जाए जो कि सुनने वालों के लिए एक डिफरेंट चीज़ हो, और बहुत अच्छा लगता है मुझे हमेशा से। और जब फीडबैक आप लोग देते हैं तो वो एक और ही मेरे लिए जो होता है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट होता है मेरे लिए। दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से। और जनाब बिल्कुल आपका साथ है, मेरा साथ है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, गुड इवनिंग और स्पेशल संडेज़ में। जी हाँ जी, और रابطے के अहम तरीक़े मैं आपको बताऊंगी इस ट्रैक के बाद जो मैंने ऑन एयर करना है आपके लिए, और उसके बाद हम आपसे बातें करेंगे। एक अदर टॉपिक होगा, सब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, कुछ कंटेंट्स होंगे, कुछ टिप्स होंगी, उसके ऊपर हम जनाब गुफ्तगू करेंगे आपके साथ। लेकिन इस ट्रैक के बाद तो मैं प्ले करने जा रही हूँ सांसों की माला, अ ब्यूटीफुल ट्रैक बाय राहत फ़तेह अली खान। सो राहत फ़तेह अली खान की राहत भरी आवाज़ में सुने आप सांसों की माला पे।

0: 101.
1: You are listening FM 101. Tune into the one above. One above.
2: This is FM 101.
3: Listeners, welcome back right after a very beautiful track in the voice of Rahat Fateh Ali. And Rahat Fateh Ali ki Rahat Bhari Awaaz mein, janaab, aap sun rahe the Saanson ki Mala pe Simru mein Pi ka Naam. And iske saath saath program mein, jaise ke track pe jaane se pehle hum guftugu kar rahe the is baare mein ki main aapko bataungi ki aap kis tarah se participate karte hain program mein. Waise to hamare regular listeners hain, wo to jante hain aur unhe pata hai ki wo kaise karte hain hamare program mein participate. Lekin jo hamare upcoming listeners hain, unko thoda sa batana zaruri hai. Kyun janaab? Well, अगर आप मैसेज करना चाहते हैं फेसबुक पेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो www.facebook.com/fm101 लाहौर का जो पेज है उसके ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हैं जनाब हमें कमेंट्स कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं अपने दिल का हाल प्रोग्राम के हवाले से कुछ बात करना चाहते हैं कोई ट्रैक प्ले करवाना चाहते हैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या जो मैं अभी सब्जेक्ट आपके साथ शेयर करूँगी उस हवाले से कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जनाब इसके साथ साथ आप मैसेज करें 4471 पर और मैसेज करने का तरीका बहुत आसान है हमेशा की तरह आपने क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाकर या टेक्स्ट मैसेज की ऑप्शन में जाकर लिखना है 101 कैपिटल एल स्पेस देना है अपना नाम ज़रूर लिखिएगा क्योंकि नाम इंसान की शनाख्त है उसकी पहचान है उसके बाद एक और स्पेस दीजिए अपने मैसेज को टाइप कीजिए और उसे भेज दें 4471 पर सिंपल और अगर आप कॉल करना चाहते हैं ऑफ एयर तो कर सकते हैं 111-111 पर दिस इज ऑल अबाउट तो जनाब मैसेजेस को भी मैं शामिल करूँगी गुफ्तगू भी हम आपसे करेंगे लेकिन एक और ट्रैक मेरा दिल चाहता है कि प्ले कर दूँ और उसके बाद आपसे मज़ीद गुफ्तगू करूँ क्या बात है हाँ और ट्रैक होना चाहिए कुछ इस तरह से सो एंजॉय दैट ट्रैक आई विल बी राइट बैक कीप लिसनिंग एफएम 101

0: You are listening FM 101. Tune into the one above. One above.
1: This is FM 101.
2: लगता है आज बहुत आंसू भरेंगे.
3: हेलो, अभी तो बहुत साथ देंगे मेरा. बल्ले बल्ले.
4: और जी ओ बल्ले बल्ले साथ ही ये बल्ले बल्ले सॉन्ग प्ले हो गया, जबकि मैंने इसको भी प्ले नहीं करना. बट एनीवेज कोई बात नहीं, ऐसा कभी होता है, टेक्निकली कोई इशू ऐसा हो जाता है कि कभी जो सॉन्ग हमने पहले प्ले करना होता है वो हो जाता है. बट एनीवेज कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके. और बात हो रही है जनाब, ट्रैक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे आपसे कि जैसे कि आप मेरे साथ सब्जेक्ट के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं, तो बहुत सारे मैसेजेस जो फेसबुक के ऊपर भी हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा 4471 पर भी लोग जो हैं वो मैसेजेस कर रहे हैं, बहुत सारे लिसनर्स. इसके अलावा आपकी ऑफर कॉल जो है 111-000-101 पे आप कॉल करें, उसको भी हम जो है मलहूस खाती रखते हैं और उसको भी हम तरजीह देते हैं, कोशिश करते हैं कि उस पर भी कॉल अटेंड हों और आपके जितने मैसेजेस हैं उसको भी रिकॉर्ड किया जाए. सो जनाब, सबसे पहले ऑफर कॉल्स की बारी है, तो वहाँ से हमें नदीम जो है वो ज्वाइन करते हैं. कहते हैं अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. कहते हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और हमें अब लेट जो है आज आपने प्रोग्राम थोड़ा सा शुरू किया. बिल्कुल जी, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो थे वो पेश आ जाती हैं इंसान को. ज़िंदगी है, ऊंच नीच हो जाती है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो एक्सेप्टेड होते हैं और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि ऐसा हो जाएगा. तो इस वजह से लाइफ इज़ ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू जो है वो चलता रहता है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट, इसलिए जो था वो लेट मैंने थोड़ा सा प्रोग्राम शुरू किया है. लेकिन नदीम, आपका बहुत शुक्रिया. देखें, आपने इतना ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है कि आर जे माविश जो है वो 6 बजे आती हैं, तो वाई 6:15. तो जनाब, एनीवेज इसके साथ साथ बात आपसे करेंगे आज टॉपिक के हवाले से भी. तो टॉपिक है जनाब आज का मेरा कि क्या खामियां जो हैं इंसान में वो पैदाइशी ही होती हैं या इन्हें सीखा जाता है. माहौल क्या बहुत ज़्यादा असरानंदाज होता है, दोस्त असरानंदाज होते हैं, जो आपकी सिचुएशन है वो वेरी करती है. कभी कभी कोई हम ऐसी गैदरिंग में बैठ जाते हैं, वही बात आ जाए ना दोस्तों वाली, कि कभी हम कोई ऐसी गैदरिंग में बैठ जाते हैं जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें फेस करने पड़ते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हमने अडॉप्ट कर ली होती हैं जो हमें नहीं पता होता समहाउ. लेकिन आज हम बात करेंगे इंसान की खामियों के हवाले से कि क्या वो पैदाइशी होती है या फिर इंसान उन्हें सीख कर बुरा बन जाता है. क्योंकि मैंने पढ़ा है आज तक जो बहुत सारी बुक्स के अंदर, वो ये है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया है ना, तो उसको हद तो ये है कि इंसान अपनी तख्लीक में भी बेऐब है. तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि अल्लाह ताला जो है वो जब इंसान दुनिया में आता है तो वो बुरा होगा. सो मुझे लगता है कि माहौल शायद ज़्यादा असरअंदाज होता है इंसान का. कोई भी इंसान जो है वो पैदाइशी बहुत सारी खामियाँ लेके नहीं आता. हाँ, हो सकता है कि मौरूसी तौर पर इनहेरिटेड आपको कुछ भी जो है ना वो फेस करना पड़े या वो चीज़ आपके अंदर हो. सो इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे. लेकिन एक अदर ट्रैक को हम शामिल करेंगे, उसके बाद हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे. लिसनर्स, आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ, क्योंकि मैं प्ले करने जा रही हूँ कुछ

जनाब ख्याल है उनका और बहुत ही ज़बरदस्त सा ट्रैक आप इंजॉय कर रहे थे मेरे साथ और मुझे ख़ुद भी बड़ा पसंद आया जनाब एंड आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। और बात हो रही है कि इंसान जो है उसकी खामियां क्या पैदाइशी होती हैं या वो कुछ सीख रहा होता है अपने माहौल से, तो ऐसा ही है और आज हम बात करेंगे इंसान की ग्रोथ के ऊपर, डिवेलपमेंट के ऊपर, कि लर्न्ड बिहेवियर होते हैं या फिर सीखे जाते हैं, या तो ऑलरेडी लर्न्ड होते हैं बाय बर्थ होते हैं या फिर ये दो टाइप्स के होते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और एक एक्टिविटी भी मैं करवाऊंगी आपको ऑन द शो, वो कुछ इस तरह से कि एक आपने लाइन लगानी है, दो एक पेज ले लें उसके ऊपर आपने एक लाइन लगा लेनी है और उस पर लिखना है ग्रोथ, राइट। अब ग्रोथ को हम किस तरह से सेक्शंस में डिवाइड करेंगे वो मैं आपको ऑन द शो बताऊंगी, क्योंकि 8 बजे तक आपका मेरा साथ है, तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। जनाब आपने एक लाइन लगानी है, उसके ऊपर लिखना है खूबियाँ, उसको ज़रब देनी है 0 से। ये चीज़ मैं आपको, ये कुलिया या फार्मूला मैं आपको एट द मिडल ऑफ द शो बताऊंगी। उसके बाद आपने इक्वल्स टू का निशान लगाना है और उसके बाद फिर लिखना है ZERO 0, ठीक है। आपने ये करना है फिलहाल, सिर्फ आपने ये करना है, एक पेज लेना है उसके ऊपर ग्रोथ लिख लेना है GROWTH ग्रोथ, राइट। और उसके स्टार्ट में सबसे पहले हम जी लेते हैं वर्ड के, जी का क्या मतलब होता है, ग्रोथ से मतलब क्या है इंसान का, कुछ सीखना, कुछ ग्रो करना या किसी चीज़ का बढ़ना। जारी बात है जब इंसान दुनिया में आता है तो ऑब्वियसली फिर एक ग्रोथ का लेवल चलता है, एक बढ़ने का अमल शुरू होता है, सीखने का अमल शुरू होता है और वो तब तक होता है टिल डेथ, जब तक आप दुनिया से चले नहीं जाते। चाहे मैं कहती हूँ आप 70 साल के हैं, 120 साल के हैं, 150 साल के हैं, 200 साल के हैं, व्हाटएवर आपकी जितनी भी लाइफ है, उस टाइम तक जी का जो वर्ड है ना ग्रोथ, वो स्टॉप नहीं होता, वो लर्न होता रहता है आपको। आप क्या सीख रहे हैं, आपकी सिचुएशंस क्या हैं, आपके एटमॉस्फेयर कितना वेरी करता है, आपके दोस्त अहबाब क्या सिखाते हैं आपको, ये सब चीज़ें जो है ना वो रिफ्लेक्ट करती हैं आपके माहौल के हवाले से। क्यों कहते हैं पहले बच्चे के 2-3 साल 5 साल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको बड़े तरीके से लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि जब बड़े अच्छे अंदाज में आपको उसको बताना पड़ता है चीज़ें, आपको सब्जियाँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर तरह की चीज़ उसको खिलानी चाहिए, ताकि वो ऑन द फर्दर लाइफ वो उन चीज़ों के साथ जो है ना वो कभी भी डिस्टर्ब ना हो, या वो कहे कि मैंने नहीं खाना या मैंने तो कभी खाया नहीं या कुछ भी इस तरह से। तो पहले जो बच्चे के 5 साल होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने हर चीज़ को उसके अंदर बड़ा कैलकुलेटेड सा होना पड़ता है आपको, गुफ्तगू के मामले में उसके साथ बिहेव करना है, सिर्फ उसी के साथ नहीं, जो और लोग भी घर में है ना उन्होंने भी बिहेव करना है। गुफ्तगू में आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, चीज़ों के रख रखाव में, बताने में, मैनर्स में और ये इन सब चीज़ों में। सो जनाब ग्रोथ का भी फ़िलहाल हम जी जो है वो डिस्कस करें और फेसबुक के मैसेजेस को भी देखूँगी मैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको भी शामिल करूँगी। लेकिन 4-4-7-1 पर हमारे साथ ग़ुलाम रसूल हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आप ही, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जाता है और मैं ना चीज़ आपका प्रोग्राम जो है वो ज़रूर सुनता हूँ। आज मैंने कई अरसे के बाद आपको मैसेज कर ही दिया और ग़ुलाम रसूल बड़ा अच्छा लगा कि आपने 4-4-7-1 पर मुझे मैसेज किया और ये बताया कि आप कई अरसे से सुनते हैं लेकिन आपने कभी मैसेज नहीं किया। तो जनाब कर दिया करें मैसेज, मैसेज की क्या बात है, मैसेज करने से आपका नाम मैं अनाउंस करूँगी तो ये आपको भी अच्छा लगेगा। सो कहते हैं बिल्कुल आप जो हैं बातें भी बहुत अच्छी करती हैं और आपकी बातों को सुन कर बिल्कुल मैं अमल भी करता हूँ, ये तो सबसे अच्छी बात है। यकीन करें मैं अपने हर शो में यही कहती हूँ कि जब कोई आपकी बात को सुनता है और उस पर अमल करता है तो यकीन करें वो सारी जो चीज़ें हैं ना उसका जो एक आपको फ्रूट होता है वो मिल जाता है। उस प्रोग्राम का जो फ्रूट है, जो रिज़ल्ट है, जो फीडबैक है, वो यही है कि अगर कोई अच्छी बात को सुनता है और उस पर अमल करता है, आपके कहने में इतना असर, इतनी तासीर होनी चाहिए कि इंसान उस पर अमल करने पे मजबूर होता है। सो जनाब इसी के साथ हम नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं और फिर हम वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। और मैं क्या प्ले करूँ अपने लिसनर्स के लिए, मैं प्ले करूँगी कुछ इस तरह से। आप इस ट्रैक को सुनो लिसनर्स, है दिल किसी की याद में। एंजॉय द ट्रैक, आई विल बी राइट बैक।

0: ऑल राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं ग्रोथ के हवाले से और चीज़ों को ये ग्रोइंग और लर्निंग बिहेवियर के हवाले से बात हो रही है कि इंसान जो है वो सीखता है चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारी चीज़ें पैदाइशी तौर पे भी जो आपके माहौल से आपको मिलती हैं, कुछ ऐसी होती हैं, कुछ इनहेरिटेड होते हैं यानी मौरूसी तौर पर आपको मिल जाती हैं, कुछ जो होता है आप ख़ुद से सीखते हैं। जैसे बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो वो वहाँ के माहौल से सीखते हैं, फिर कॉलेज होती है, यूनिवर्सिटी होती है, फिर एक पाकिस्तान में ट्रेंड है ना कि इस प्रोसेस के बाद आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, फिर आपकी जी वो जो है वो शादी का सोचते हैं और उसके बाद आपकी ज़िंदगी प्रैक्टिकली जो है ना वो चलती रहती है। सो इसके साथ साथ बहुत सारी और रीजंस भी जो है ना वो चलती हैं। तो कुछ चीज़ें जो आपकी इनहेरिटेड होती हैं वो कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि ये बंदे, ये देखो ये जो हमारी दादी थी ऐसे करती थी, ये भी ऐसे करती है, या हमारे दादा में ये बात थी, वो उसूल पसंद थे, इसकी भी बात में सच्चाई होती है और ये उसूल पसंद है, ये डर जाता है उसूलों की खातिर, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, कुछ इस तरह की बात भी जो है ना वो थ्रू आउट द योर लाइफ चल रही होती है। सो जनाब, बात ये है कि ज़िंदगी में दो तरह के फेजेस होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होता है। आपने ख़ुद देखिए, हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगर कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी होगा, अगर कोई बहुत ज़्यादा बदसूरत है तो वो बहुत बुरा भी होगा। समटाइम्स इन चीज़ों का रियलिटी से जो है ना वो कम लिंक होता है। कहते हैं ना कि ख़तरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरों की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो चेहरा अगर इंसान का खुशनुमा या खुश वो कहते हैं ना नहीं भी है, इतना खूबसूरत नहीं भी है, लेकिन अगर दिल अच्छा है और आपका इनसाइड जो है आप प्योर हैं, प्योर सोल हैं, तो फिर आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, तो फिर आपकी खैर है। बस चेहरा जो है वो अल्लाह ताला ने वैसे तो सभी का बहुत खूबसूरत बनाया, लेकिन कुछ लोग एक्स्ट्रॉर्डनरी हुस्न रखते हैं, खूबसूरती रखते हैं। कई लोगों की आइज़ बड़ी अच्छी होती हैं, कई लोगों का गुफ्तगू बड़ा अच्छा होता है, कई लोगों का चलना उठना बैठना भी बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग बिहेवियर वाइज बहुत अच्छे होते हैं। तो इस वजह से हर इंसान डिफरेंट हवाले से अल्लाह ताला ने जितने भी इंसान दुनिया में पैदा किए हैं, कोई भी बेकार नहीं है, कोई भी बदसूरत नहीं है, सब खूबसूरत हैं अपनी अपनी जगह पर। तो बात हो रही है ग्रोथ के हवाले, सबसे जी पहले हमने डिस्कस किया है, इट्स बेसिकली गो टू गॉड इन प्रेयर्स डेली। आपने क्या करना है, जो आपने बेसिक जो माहौल मैंने जैसे बताया बच्चे का होता है वैसे आप उसको सिखाते हैं, उसके साथ बड़ा क्यूरियस होना पड़ता है आपको और बहुत ज़्यादा चीज़ों के मामले में एहतियात करनी पड़ती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी रूटीन का हिस्सा समझते हैं, हम उन्हें ये समझते हैं कि ये हमारी रूटीन का हिस्सा है, बस ये ऐसे ही चलती चली जाएंगी और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, चलने दो, अच्छा फिर क्या हुआ। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो हम बोल लेते हैं और अपनी रूटीन होने की वजह से हम उनको इग्नोर कर देते हैं। जब हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं फिर हमारा आता है आर, आर दैट मीन्स रीड, रीड आउट योर वर्ड्स, कंसंट्रेशन नहीं रहती हमारी, बेसिकली हम फोकस नहीं कर पाते। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में 20 दफ़ा बल्कि 100 से भी ज़्यादा दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब हम फोकस नहीं कर सकेंगे ना, क्योंकि हमारा ब्रेन भी तो है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक ब्रेन भी दिया, एक जहन दिया समझने के लिए, सीखने के लिए, देखने के लिए, परखने के लिए चीज़ों को, जब हम फोकस नहीं कर पाते, आज हम मल्टीटास्किंग है और यही हमारी बर्बादी है मैं समझती हूँ, और मेरे साथ बहुत सारे लिसनर्स भी जो हैं वो इस बात पर अग्री करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि हम मोबाइल भी चला रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक खातून की मिसाल ले लेती हूँ, हमेशा से मैं यही बहुत जनरल जो जनरलाइज़ करके बातों को करती हूँ कि बहुत ज़्यादा सिंपल करके करने की कोशिश करती हूँ ताकि एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझ आ जाए मेरी बात। सो अगर एक खातून जो किचन में खाना बना रही हैं वो क्या कर रही हैं, फ़ोन कान पे लगा हुआ है, किसी सहेली से या रिश्तेदार से बात कर रही हैं, कोई मेहमान आ गया तो उसको भी, उस बंदी को भी कहेंगे आ जाओ तुम किचन में खड़े हो जाओ मेरे साथ बातें करो। बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है पूछ रहे हैं मामा ये ऐसे है या पुप्पो या चाची वट एवर जो भी रिश्ता है उसका, उसका वो पूछ रहे हैं जनाब ये ऐसे बता दें, अच्छा तुम इधर बैठो मैं तुम्हें बता देती हूँ। यानी आपने मल्टीटास्किंग को समझा कि शायद ये बहुत ज़्यादा वैल्यूड चीज़ है, इसको करने से आप सुपर हीरो जो है ना वो बन गए, सुपर वूमेन बन गई हैं, सुपर मैन बन गई हैं, वट एवर कुछ भी बन गई हैं। अपने आप को आपने ये फील किया कि मल्टीटास्किंग कोई बहुत बड़ा जिन है जिसको मैंने काबू कर लिया और देखें जी मैं जो हूँ ना हर काम कर सकती हूँ एक वक्त में, जबकि यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन फोकस नहीं कर पाएगा, खाने में नमक कम हो जाएगा या मिर्चें ज़्यादा हो जाएंगी, जिससे बात कर रही हैं उससे प्रॉपर बात नहीं कर पाएंगी, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से कि जब आप अपने ब्रेन को फोकस्ड नहीं रखेंगे, मल्टीटास्किंग करेंगे तो ब्रेन थक जाएगा और हम कहेंगे बैठे हुए रात को या शाम में जब हम चाय पियेंगे व्हाटएवर जब हम खाना खा रहे होंगे कुछ भी तो हम बैठे कहेंगे कि हमने तो कोई ऐसा बोझ ही नहीं उठाया, फिर हम थक क्यों गए हैं। असल में जब आपका ब्रेन थक जाएगा ना तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली थक जाएगी। ये मैं नहीं कह रही, ये साइंस कह रहा है। प्लीज़ वन टाइम वन टास्क करें। अगर आप खाना पका रहे हैं सो डू कंसंट्रेट, अगर आप खाना खा रहे हैं तो मोबाइल छोड़ दें, खाना खाएं कंसंट्रेशन से। अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बस उसी को पढ़ाएं, बातें करना आप छोड़ दें। और अगर आप बातें करें तो सिर्फ बातें ही करें, ताकि आपको पता हो और आपके ब्रेन को पता हो कि आप क्या एक्टिविटी करें। सो ग्रोथ इज़ बेसिकली व्हाट आई मीन टू से कि आपने अगर रीड करना है तो रीड करना है, अगर आपने कोई चीज़ करनी है सब, क्योंकि हमारा आज का ना एक वो कहते हैं, हम बड़े शौक से बताते हैं, हम एक टाइम पे 10 काम करते हैं जी, हम इतने ज़्यादा मल्टीटास्किंग हैं और हम इतने ज़बरदस्त इंसान हैं, हम हर चीज़ को लेके चल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लीज़ आप अपने ब्रेन को थका रहे हैं। इसके साथ नेक्स्ट ट्रैक को ऑन एयर करते हैं और उसके बाद वापस आते हैं, क्योंकि अगर डायल अप की जानिब देखा था तो 6:52 हो गए, क्योंकि हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए जाना है न्यूज़ बुलेटिन की जानिब जनाब। सो इसीलिए मैं प्ले करूंगी कुछ इस तरह से, एंड आई प्ले दिस ब्यूटिफुल ट्रैक फॉर ऑल द लिसनर्स।
1: कभी जो मैं इश्क लिखूं
0: तेरी तस्वीर बने, डेडिकेट टू ऑल द लिसनर्स।

0: जो तू मेरी हीर बने।
1: दिस इज FM 101.1।
2: We will be right back after a short break. Stay tuned.
3: Alright listeners, welcome back. और 6:57 हो चुके हैं मेरे डायल अप पर और हम चलेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए न्यूज़ बुलेटिन की जानिब और इसके बाद हम वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहने क्योंकि मेरा आपका साथ 8 बजे तक है। अगर बीच में कमर्शियल ब्रेक आ जाए या कमर्शियल्स प्ले हो जाए या कोई छोटा सा प्रोग्राम आ जाए तो आपने ये नहीं समझना कि आरजे महविश जैदी जो है वो गायब हो गई हैं पिक्चर से। ऐसा नहीं है, मैं यहीं पर हूँ, लेकिन आपने कहीं नहीं भागना। हम जाने हैं न्यूज़ की जानिब सुनने के लिए ताज़ा तरीन खबरें, सो स्टे ट्यून्ड।
1: This is FM 101.
2: We will be right back after a short break. Stay tuned.
4: I love FM 101.

ऑल राइट लिसनर्स, वेलकम बैक और खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर से संडे स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूँ आरजे माफिश सैदी अगेन, और एक कमर्शियल प्रोग्राम था जो हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा था, इस वजह से उनको हम फरामोश नहीं कर सकते, उनको हमें प्ले करना होता है। लेकिन बहुत सारे लिसनर्स एनॉयड हो जाते हैं और कुछ जो है वो छोड़ के चले जाते हैं, और कुछ समझते हैं कि भाई पता नहीं आरजे शायद कहीं चली गई हैं और प्रोग्राम अब ख़त्म हो गया है। नहीं, मैंने न्यूज़ ब्रेक पर जाने से पहले भी यही गुजारिश की थी आपसे, और अब आई थिंक आप समझ गए हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं मैसेजेस की जानिब। नज़ीर खोसो हैं, एक्चुअली मैं पहले फेसबुक के मैसेजेस को रीड आउट करूंगी, उसके बाद मैं 4471 पे जो आप मैसेज करते हैं उसको रीड आउट करूंगी। तो सबसे पहले www.facebook.com/fm101lahore का जो पेज है उसके ऊपर नज़ीर खोसो हैं, कहते हैं आई एम नज़ीर खोसो फ्रॉम सोहबतपुर बलूचिस्तान। राइट जनाब, और आपको हम खुश आमदीद कहते हैं जनाब अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पार्टिसिपेट किया हमारे प्रोग्राम में। इसके साथ साथ हैं फिरोज़ आलम जान, कहते हैं अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं आई एम फ्रॉम मदीना मुनव्वरा सऊदी अरेबिया, शो इज़ ऑलवेज गुड एंड शो इज़ गोइंग ऑसम। थैंक यू सो मच, और आपने मुझे दुआएं भी बहुत सारी दी हैं, आपने कहा अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, कोई गम ना दे, सेहत और तंदरुस्ती दे और हर मैदान में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं हमेशा आपके साथ। और जनाब आपने लिखा है आई एम फ्रॉम मदीना मुनव्वरा सऊदी अरेबिया, तो वेलकम जी आपको शो में, आपको आपकी पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, और शो में आपको मैं अगेन वेलकम कहती हूँ। फिरोज़ आलम जान साहब हैं हमारे साथ। रियाज भट्टी फ्रॉम शाहदरा लाहौर हैं, कहते हैं जी इन्होंने बहुत सारी दुआएं दी हैं मुझे, नाइस शो कहा है इन्होंने मुझे। हमादुल्लाह मलिक खेल हैं, अस्सलामुअलैकुम कहा है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, और कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली चीज़ गुर्बत है क्योंकि इसमें सारे रिश्ते टूट जाते हैं। वल हमादुल्लाह मैं आपको ना ये बताऊँगी कि गुर्बत एक्चुअली ऐब नहीं है। अगर आप ये समझते हैं ना कि ये एक ऐब है, इसे ऐब नहीं कहना चाहिए। और जहाँ तक बात रही रिश्तों की, और जहाँ तक बात रही कि रिश्ते छोड़कर चले जाते हैं और इंसान को कोई पूछता नहीं है, तो देखें जो इंसान अपनी जड़ के साथ ठीक नहीं है ना, वो फिर दूसरे मामलात में भी वैसा ही है। इसलिए जो इंसान लॉयल नहीं है अपने रिश्तों के साथ, उसकी कोई रॉयल्टी नहीं है, विच इज़ नॉट लॉयल। जो लॉयल नहीं है वो रॉयल भी नहीं है। आपने मेरा शायद मैसेज जो है वो समझ लिया होगा, ये मेरी बात जो है वो भी समझ ली होगी। इसके अलावा आप कहते हैं जी परेशानी में चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर दूसरों से बात करना एक मुश्किल तरीन इम्तिहान है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जनाब आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं ग्रोथ के हवाले से कि इंसान की जो ग्रोथ है उसमें GROWTH, मैंने एक फार्मूला बताया था आपको कि आपने लिखना है स्लैश लगानी है, उसके ऊपर लिखनी है खूबियाँ, उसको ज़रब देना है ज़ीरो से, ZERO ज़ीरो से इज़ इक्वल्स टू के बाद फिर लिखना है आपने ZERO ज़ीरो। वॉट दैट मीन्स, दिस मीन्स कि अगर आपके पास एक के बाद 0000, मैं आपको पावर ऑफ ज़ीरो बताने लगी हूँ कि पावर ऑफ ज़ीरो क्या है, जिसे हम कुछ नहीं समझते, जिसको मैथ्स में ना प्लस में काउंट किया जाता है ना ही माइनस में काउंट किया जाता है। लेकिन बात क्या है कि एक के बाद आप जितने मर्जी ज़ीरो लगा लें, 10 ज़ीरो लगा लें, उसके बाद और ज़ीरो लगा लें, एक टाइम आएगा जब आप उस अमाउंट को पढ़ नहीं पाएंगे। ऐसा ही होगा ना, अरब खरब के बाद, बिलियन ट्रिलियंस के बाद आप उस अमाउंट को पढ़ नहीं पाएंगे, क्या ऐसा ही है ना। तो इसी वजह से ज़ीरो जितने मर्जी बड़े हो जाएं, कहते हैं कि बादशाह को फ़कीर कर देता है ये ज़ीरो जो है, और बड़े बड़े लोग जो हैं वो रुलते हुए देखे हैं इस ज़ीरो के पीछे। ज़ीरो इज़ अ पावरफुल वर्ड जो किसी एक के साथ लगे, दो के साथ लगे, तीन के साथ लगे, उसकी अमाउंट को गेन करता जाता है। पहले 10 रुपये होते हैं, फिर 100 रुपया होता है, फिर 10,000 रुपया बनता है, फिर 10,000 होता है, फिर लाख होता है, फिर मिलियन होता है, ठीक है 10 लाख हो गया, फिर इस तरह 1 करोड़, इस तरह होते होते बिलियन ट्रिलियंस आप बना लेते हैं। लेकिन वो क्या है ना कि ज़ीरो को जब आप ज़रब देते हैं कितनी ही बड़ी अमाउंट हो तो वो ज़ीरो ही आती है। जनाब कुछ समझाया है मैंने, तो आई थिंक आपको कुछ समझ आ गया होगा। ज़ीरो भी दो किस्म का होता है, जानते हैं आप, वो प्लस माइनस वाला नहीं भाई, पर्शियन फॉल्ट कहा जाता है इसको, डिफ़ॉल्ट कहा जाता है। एक ज़ीरो होता है जो डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, और एक ज़ीरो होता है जो लर्नड होता है, यानी इंसान के अंदर भी एक ज़ीरो है, जिसे एक बोलते हैं कि जी ये तो इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो बाय बर्थ हैं। कुछ इंसान जो अच्छा बोलते हैं, कुछ इंसान जो खूबसूरत हैं, कुछ इंसान जिनको पैदाइशी तौर पर कुछ ऐसे मौरूसी इनहेरिटेड क्वालिटीज़ मिली होती हैं अपने आबाव अजदाद से, वो उनका प्लस पॉइंट होता है। और कुछ लोग जो
माहौल से अडॉप्ट करते हैं, जो लर्न करते हैं, जो सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, जो एक्वायर्ड करते हैं उन स्किल्स को, उसे बोला जाता है. तो दो तरह के जो ज़ीरो हैं ना वो इंसान के अंदर होते हैं, एक लर्नड होते हैं जिन्हें अडैप्टिव भी बोल सकते हैं, और एक वो जो बाय बर्थ होते हैं और डिफ़ॉल्ट होते हैं, राइट. तो इसी के साथ हम नेक्स्ट ट्रैक की जानेब बढ़ते हैं और उसके बाद हम वापस आते हैं. तो जनाब हम सुन रहे थे कुछ इस तरह से, और मेरा ख्याल है कि उसी को प्ले करना चाहिए या फिर कुछ और कर लें प्ले, क्या ख्याल है. तो जनाब कुछ और ही प्ले कर लेते हैं और फिर सुनते हैं कुछ इस तरह से.

0: This is FM 101.
1: लिसनर्स वेलकम बैक. और आप सुन रहे थे हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही ओल्ड सा ट्रैक, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक. और हमेशा कोशिश की जाती है उन ट्रैक्स को प्ले करने की जो आपके रिक्वेस्ट ट्रैक्स होते हैं. जनाब हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हमीद फ्रॉम फारूका आबाद, और कहते हैं कि मैंने तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद आपकी आवाज़ को सुना है और यकीन करें कि बहुत ही अच्छा लगा और एकदम से मैंने पहचाना और मैंने कहा यार ये कोई आवाज़ ऐसी है जो जानी पहचानी है. तो जनाब बिल्कुल, मैं मुहर्रम सफ़र और रबीउल अव्वल के बाद अब मैंने प्रोग्राम जो है वो शुरू किए हैं और वाकई मैं 2 से 3 महीने के लिए बिल्कुल गायब थी, आउट ऑफ द पिक्चर थी. तो थैंक यू सो वेरी मच कि आज भी आप आवाज़ सुनकर तो पहचानते हैं और समझ जाते हैं कि ये आरजे महफ़िश की आवाज़ है. इसके साथ साथ हमारे साथ नुमान है, उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड रबीउल अव्वल के बाद अब मैंने प्रोग्राम जो है वो शुरू किए हैं और वाकई मैं 2 से 3 महीने के लिए बिल्कुल गायब थी, आउट ऑफ द पिक्चर थी. तो थैंक यू सो वेरी मच कि आज भी आप आवाज़ सुनकर तो पहचानते हैं और समझ जाते हैं कि ये

जनाब, उसके साथ साथ आप मैसेज करें 4471 पर और बात कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट के हवाले से कि क्या सारी खामियां जो हैं वो इंसान के अंदर पैदाइशी तौर पे होती हैं या फिर इंसान अपने माहौल से सीखता है। तो मैं अभी बात कर रही थी ट्रैक पर जाने से पहले कि पावर ऑफ ज़ीरो, ये ज़ीरो की ताकत जो है ना, ये कोई भी नहीं जानता। ये कहते हैं जी मैथ्स में ज़ीरो ना प्लस में होता है ना माइनस में होता है, लेकिन जब इसके इसको वन के साथ ऐड कर लें ना, यानी खूबियों को ज़रब दे लें आप ज़ीरो के साथ, तो वो सारी खूबियाँ जो हैं वो ज़ीरो से ज़रब खाकर ज़ीरो हो जाती हैं। एक बात इंटरनेशनल बताई जाती है और यूनिवर्सली भी ये कहते हैं लोग, ज़्यादातर यहाँ पे आपने आम उर्फ़ आम में भी लोगों को कहते हुए सुना होगा बहुत सारी बातों में, कि वो कहते हैं कि ये जी फ़लाँ बाहर की यूनिवर्सिटी या फ़लाँ कोई ऐसी ऑथेंटिक इदारे का नाम लेकर कहते हैं वो कि जी यहाँ से पढ़ेगा तो इसका मतलब ये कामयाब है, यहाँ की डिग्री होगी तो फिर जी अर्निंग जो है वो अच्छी होगी और तो ही ग्रोथ होगी, तो ही कामयाबी होगी। और ये ज़ीरो जो है वो कहते हैं ये तो ज़ीरो है, इसकी कोई औकात नहीं है और इसकी कोई जो है ना वैल्यू नहीं है। व्हाट इज़ ज़ीरो? ज़ीरो इज़ नेचुरली हैपन्स। कुछ चीज़ें मैंने बताई थी नेचुरली हैपन्स होती हैं जो बाय बर्थ होती हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सीखी जाती हैं, वो अडॉप्ट होती हैं। तो ज़ीरो जो है वो है जो हमने सीखा है, हमारी खामियों में एक खामी का हिस्सा जो हमें मिला है वो माहौल से है, किसी दोस्त से है, किसी गैदरिंग से, किसी कंपनी से, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनकर, किसी ऐसी टीम का हिस्सा बनकर, वो शायद वो ज़ीरो हमने वहाँ से सीखा है। अच्छा एक एग्जांपल देती हूँ, एक लाइव एग्जांपल भी है और नाम तो नहीं मैं लूँगी, लेकिन वैसे जस्ट एक आपको कहानी के तौर पे बताती हूँ कि एक वालिद साहब होते हैं, वो अपने बेटे को बुलाते हैं और पूछते हैं कि भई काफ़ी देर हो गया तुम मिलने नहीं आए हो और अभी थोड़े दिन पहले मेरी तुम्हारे साथ मुलाकात हुई थी, तो मैंने एक चीज़ तुम्हारे में नोट की थी, तो तुम्हारी कंपनी जो तुम जहाँ जाते हो जॉब करते हो जहाँ पर, वहाँ पर कोई बंदा ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा मजाक करता है, जिसका जो एक ह्यूमर है, सेंस ऑफ ह्यूमर वो काफ़ी ही अच्छा है, क्योंकि मैंने कुछ नोट किया है तुम्हारी पर्सनैलिटी में। तो वो बेटा कहता है कि हाँ अबा जी एक नया दोस्त बना है, तो वो मैं उसकी जो है ना कंपनी में बैठा हूँ और ज्वाइन किया है मैंने उसको, तो वो बड़ा अच्छा है, बड़ा उसका जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत अच्छा है और वो बहुत ज़्यादा मजाक करता है। तो कहता है तभी बेटा मैं समझ गया था, जब तुमने मुझसे बहुत ज़्यादा मजाक किया है ना, तो मैं समझ गया था कि तुम्हारी कंपनी में कोई ऐसा इंसान, तुम जिस गैदरिंग में बैठते हो वहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जो तुम्हारे करीब है और जिसकी वजह से तुम इस तरह से। तो इंसान जिस तरह का होता है, कहते हैं जी अगर कोई पुलिस में है, कोई किसी ऐसे इदारे में है जहाँ उसने तफ्तीश करनी है, तो वो घर में भी तफ्तीश कर रहा होगा। तो जिस इदारे में या जिस भी प्रोफेशन में आप होते हैं ना, उस प्रोफेशन का रंग आपके ऊपर ज़रूर चढ़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि सारी चीज़ें आपने अपने घर से ही सीखी होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ आप घर में सीखते हैं, कुछ बुराइयाँ भी घर में सीखते हैं, इसी तरह जो बाहर के माहौल होते हैं उसमें भी कुछ आप अच्छाइयाँ सीखते हैं, कुछ बुराइयाँ, तो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती जाती हैं। अब समटाइम कुछ ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा जो वेल सेटल्ड लोग जैसे आप जिन्हें आप कह लें, बहुत ज़्यादा अमीर लोग कह लें जिन्हें आप, जो बाय बर्थ जिनको फेयर होता है, किसी चीज़ का खौफ होता है किसी चीज़ का, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि हमें फ़लाँ चीज़ का, जैसे वहम हो जाना, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेना, जैसे काम चोरी की आदत होना, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक चीज़ जो एक काम के लिए बनी है वो उस काम के लिए बेहतर परफॉर्म कर सकती है, या वो चीज़ जो इंसान ने खुद ही अमेंड करके धक्के से फंसा दी है, बना दी है, और मतलब उसका वो काम तो नहीं है, लेकिन क्या है कि वो फिर भी चले जी काम चलाई वाला काम हो गया, ऐसा ही है ना। तो मेरा कहने की मुराद ये है, और एक एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगी आपको, समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ इंसान जो ऐसे होते हैं जिनमें वो क्वालिटी नहीं होती, लेकिन उनको उस जगह पे रखा जाता है, वो वहाँ पे वेल परफॉर्म्ड नहीं होते हैं, लेकिन कोशिश की जाती है कि इनको परफॉर्म करवाया जाए। मैं मिसाल दूंगी, जैसे एक नाला पोनी है, जैसे हम नाला डालते हैं, ठीक है। अब मैंने इसलिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना जनरल एग्जाम्पल वो दी है। अब जैसे नाला डालने वाली पोनी है और आप उससे क्या लिख सकते हैं, उसको इंक में डबोएं और क्या आप उससे लिख सकते हैं? भाई काम ही चलाना है ना आपने। नाले पोनी का क्या काम है कि वो नाला डालती है? बिल्कुल इसी तरह एक पेन है, पेन का क्या काम है कि वो लिखता है, वो राइट करता है, लिखता है वो। अब अगर एक पेन है उसको आप नाले पोनी की जगह इस्तेमाल करेंगे तो कभी पेन पीछे रह जाएगा, कभी निब आगे चली जाएगी, ऐसा ही होगा ना, कभी उसका ढक्कन उतर जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, यानी वो नाला तो आप डाल लेंगे किसी ना किसी तरीके से, लेकिन क्या है कि वो उसको बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकेगा। मेरी ये सारी एग्जाम्पल समझाने का सिर्फ एक मकसद है कि इंसान के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो एबिलिटीज़ होती हैं,

0: कोशिश करें कि उसी को आप पॉलिश करके, फाइन करके उसे अपनी प्रैक्टिकल फील्ड का हिस्सा बनाएं, ना कि वो चीज़ें जो आपके अंदर नहीं है और आप जानबूझकर उसको अपने अंदर जो है ना वो रखें और फिर आप किसी कंपनी में जाएं और वहां जाके, अब जैसे एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, कुछ भी है, वट एवर, तो अगर एक बंदे को नहीं चलाना आता, आप किस तरह से उसे परफॉर्म करवा सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट, और इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट ट्रैक की जानिब, जो हमें नुमान ने जो है रिक्वेस्ट किया है, तो जनाब उसको ऑन एयर करते हैं और उसके बाद हम वापस आएंगे, क्योंकि गुफ्तगू बहुत ज़्यादा हो जाती है इसलिए बीच में से निकलना मुश्किल हो जाता है। सो इस ट्रैक को रिक्वेस्ट किया नुमान ने, और नुमान आपकी रिक्वेस्ट जो है वो ऑन एयर कर दी गई। दिस इज़ अ फास्ट बीट ट्रैक बाई हीरे एंड जुनून।
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,

0: is FM 101.
1: You are listening FM 101. Tune into the one above. One above.
2: Alright listeners, welcome back. और जैसे कि मोहम्मद तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं 111-111 पे ऑफ एयर कॉल्स में, और बहुत सारी दुआएं दी उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया. और यही कह रहे थे कि इंसान पैदाइशी तौर पर इतना बुरा नहीं होता, अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को बुरा नहीं पैदा किया. हाँ, माहौल जो होता है, सिचुएशंस जो होती हैं, गैदरिंग्स जो होती हैं या सोसाइटी जो होती है, वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ असरअंदाज ज़रूर होती है. अब वो अच्छी है या बुरी है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को चूज़ करता है. और समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान बजाते खुद बहुत अच्छा होता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी गैदरिंग में बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, लेकिन वो एक बंदा जो होता है ना, वो स्मोकिंग नहीं करता. तो जाहिर बात है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बुरी सोसाइटी में रहकर भी बुराई को अडॉप्ट नहीं करते. वो बड़े एक्सेप्शनल किस्म के लोग होते हैं, बड़े एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो. और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे माहौल में रहकर भी माहौल को बुरा कर देते हैं. तो एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, और हम ये नहीं कह सकते कि कोई इंसान जो है उसके ऊपर पूरा कोई क्राइटेरिया जो है वो फिट होता है. वेरिएशंस ऑल द वे हैं. इसी के साथ हम मैसेज को शामिल करेंगे. हमारे साथ हैं अली रज़ा, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आप ही, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, लेकिन कहाँ गायब हो जाती हैं आप. वेल, मैं गायब तो नहीं होती हूँ. हाँ, मुहर्रम सफ़र 2-3 महीने मैंने प्रोग्राम नहीं किया. मैं ज़रूर गायब थी, लेकिन अब आपके साथ मौजूद हूँ. और पिछला संडे का मैंने शो मिस नहीं किया था, किया था प्रोग्राम अगर आपने सुना हो तो. और इसी के साथ कहते हैं जी, आपका हमेशा हम शो जो है वो मिस करते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा आपकी, क्योंकि बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं और आपका बोलना बहुत अच्छा लगता है हमें. वेल, अगर आपको मेरा बोलना अच्छा लगता है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने आपको बड़ी खूबसूरत समात दी है, बड़ी अच्छी समात दी आपको, कि मेरी आवाज़ आपको भली मालूम होती है, अच्छी मालूम होती है. इसी के साथ फैज़ान है हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं क्या हाल है आपका. और टॉपिक आपका बहुत अच्छा है कि इंसान में बहुत सारी खामियां जो होती हैं वो माहौल से सीखी जाती हैं, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता. बिल्कुल आपने सही बात किया. और कहते हैं जो ज़ीरो की पावर है वो वाकई कोई नहीं जानता. कुछ लोगों को जिनको हम ज़ीरो समझते हैं ना, असल में वो ज़ीरो होते नहीं हैं. बिल्कुल ऐसा ही है फैज़ान के, कुछ लोगों को जिनको हम कुछ नहीं समझते कि भाई ये तो ऑर्डिनरी सा इंसान है, इसने क्या करना है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पर होने के बावजूद वजूद भी वो नहीं कर पाते जो वो इंसान कर देते हैं. सो अच्छाई का जो मयार है वो सीट का होना, किसी अच्छे ओहदे का होना या ना होना बिल्कुल भी मैटर नहीं करता. बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन उसमें ये भी एक एक्सेप्शन है. वो खामियां जो बाय बर्थ हमारे अंदर होती हैं, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं. क्यों? क्योंकि हमें उसका पता ही नहीं होता कि वो कब रिप्रेजेंट होती हैं. अच्छा, वो सामने का बात नहीं है, ये भी मैं बताऊंगी. फॉल्ट्स होते हैं ना जिन्हें हम बोलते हैं, गलतियां बोलते हैं, खामियां बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं. जब हम किसी, जो हमने किसी के थ्रू सीखा होता है, ठीक है ना, वो तो ख़त्म हो सकता है. जैसे अगर गैदरिंग में कोई दोस्त है जो कि स्मोकिंग करता है, ठीक है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको मना करते हैं, वो नहीं बाज आता, ठीक है ना. क्यों? क्योंकि वो उसने बाय बर्थ अपने जो अबाव अजदाद हैं, जो अपने बड़े हैं, उनसे लिए. लेकिन अगर कोई नया नया मतलब स्मोकिंग करता है गैदरिंग में बैठ के, सोसाइटी में बैठ के, और उसने जो पहले है वो कभी स्मोकिंग नहीं की, तो वो क्या है, वो आदत ख़त्म हो सकती है, क्योंकि वो उसने बाय बर्थ नहीं सीखी. तो मेरा कहने का भी मतलब यही कि जो चीज़ें आपके माहौल में होती हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, उन फॉल्ट्स को आप ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर मौजूद नहीं है, आपकी फितरत में नहीं है. कहते हैं ना, समटाइम इंसान की फितरत में जो चीज़ होती है ना, उसको वो चेंज नहीं कर सकता, वो ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं. सो कहते हैं लर्न बिहेवियर्स होते हैं. लर्न बिहेवियर्स क्या होते हैं? वो ख़ास काम जो आप करते रहते हैं आपके अंदर पैदा हो जाते हैं किसी फील्ड के साथ. जैसे मैंने बताया आप एसोसिएट हैं, तो उस फील्ड की कुछ बातें आपके अंदर आ जाएगी. अब जैसे समटाइम्स कुछ लोग टीचर हैं, लेक्चरर हैं, या लेक्चरशिप करते हैं, या कुछ भी इस तरह से. जैसे कोई, मैंने जैसे एग्जांपल दी थी, पुलिस में है कोई बंदा, या उसने जो है वो तफ्तीश करनी है या कुछ भी करना है, तो घर में वो आम तौर पे भी जब बात करेगा ना, तो ऐसे लगेगा जैसे वो तफ्तीश कर रहा है, ऐसा लगेगा जैसे वो कोई डिक्टेट कर रहा है, कुछ चीज़ बता रहा है. यानी जो आप जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस चीज़ से, जिस सेक्टर से आपका ताल्लुक होता है, या जिस कंपनी में होते हैं, या जिस प्रोफेशन में आप होते हैं, उसकी छलक जो होती है वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी में नजर आती है. क्यों? क्योंकि आपने उस माहौल से सीखा होता है, इसलिए इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है. अब फॉर एग्जांपल, एक बंदे के मोबाइल के ऊपर ऐसे आपने चैनल्स भी सब्सक्राइब किए हुए हैं जो آپ کی پرسنالٹی کے اپوزٹ ہیں, تو کیا ہوگا کہ وہ آپ کو وہ باتیں سکھا رہے ہیں جو آپ میں ہیں ہی نہیں. اور سم ٹائم لوگ آپ کو دیکھ کے بڑا حیران ہوں گے کہ یار یہ بندہ ایسا ہے تو نہیں, ایسا لگتا تو نہیں, پر اس نے ایسی بات کیسے کر دیا. سو دس از دا پوائنٹ کہ جب آپ ماحول سے چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں ان کا ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے, یا سم ٹائمز جو ہمارے اندر ہوتی ہیں, بلڈ ان ہوتی ہیں, ہماری فطرت میں ہوتی ہیں, ان وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہیں کیونکہ ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے, چاہتے ہوئے بھی چینج نہیں کر سکتے. جتنی مرضی کوشش کر لیں ہم ان کو بدل نہیں سکتے, یہ ہمارا بھی قصور نہیں ہوتا. لیکن تین طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ فیڈ بیک. بعض اوقات جب لوگ آپ کو فیڈ بیک دیتے ہیں کہ بھائی یہ فالٹ ہے اور آپ کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے, تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فالٹ ہمارے اندر ہے اور اب ہمیں پتہ چل گیا ہے. جس چیز کا پتہ چل, جیسے کوئی بیماری ہے, کوئی ڈیزیز ہے, جب انسان جو ہے نا وہ اپنا ٹیسٹ وغیرہ کراتا ہے تو لوگ ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں بھائی یہ پرابلم ہے تمہیں, اب تم اس طرح سے میڈیکیشن کرو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے. بالکل فیڈ بیک سے ہمیں اس طرح پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے فالٹ کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں, اس کو مٹا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کم کر سکتے ہیں. سیکنڈ تھنگ, ریزلٹس بتاتے ہیں. جیسے کوئی بچہ فار ایگزامپل کلاس میں بہت اچھا ہے, بہت اچھا پڑھائی میں بھی ہے سب کچھ, لیکن جب وہ پیپر دیتا ہے تو وہ فیل ہو جاتا ہے. بھائی اب اس میں اس بیچارے کا کیا قصور ہے, اس کے مارکس اچھے نہیں آتے. مسئلہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کہ وہ پیپر دینے میں کوئی مسئلہ کرے, یا اسے فیئر ہے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں, یا کچھ بھی, آپ کسی اسٹریس میں آ جاتے ہیں, کسی انگزائٹی کا شکار ہیں, اس لیے آپ پیپرز میں اچھا پرفارم نہیں کر پاتے, ادر وائز آپ بہت اچھے ہیں. تو کیا ہوتے ہیں, ریزلٹس بتاتے ہیں. فرسٹ تھنگ از فیڈ بیک, سیکنڈ تھنگ از ریزلٹس, اور تھرڈ تھنگ کیا ہوتی ہے, سچویشنل ریفلیکشن ہوتی ہے. بعض اوقات زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہوتے ہیں انسان کے کہ انسان کو فالٹ سمجھ نہیں آتی, لیکن ان سچویشنس کے ہیپنز ہونے کی وجہ سے, ان ریفلیکشنس کی وجہ سے, ان مرر ریفلیکشنس کی وجہ سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ میں یہ فالٹ ہے, اب آپ اس کو اس طرح سے ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. سو جناب, ریکٹیفیکیشنس کے بہت سارے اور طریقے ہیں, لیکن تین جو ایک اہم طریقے تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں. اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہم نیکسٹ ٹریک کی جانب, اور پھر واپس آتے ہیں آپ کے میسیجز کو شامل کریں گے. اسٹے ٹیون ود ایف ایم 101 ود آر جے مہوش زیدی. کاٹے نہ کریے, بیوٹیفل ٹریک, آن دی ووکلز رائٹ ناؤ.

0: You are listening FM 101. Tune into the one above. One above.
1: Big radio, big style.
2: Please, friend.
1: FM 101.
3: This is FM 101.
4: लिसनर्स वेलकम बैक. और आप जनाब सुन रहे थे बहुत ही ज़बरदस्त सा ट्रैक काटे ना कटे रे रतिया सैया इंतज़ार में. और अगर इसका ओल्ड वर्जन भी सुना जाए तो वो भी किसी से कम नहीं है जनाब. ये तो हमने न्यू करके जो है ना उसका कोंगो आपको सुनाया. बहरहाल बात हो रही है जनाब खूबियों और खामियों के हवाले से कि क्या खामियाँ इंसान की पैदाइशी होती हैं या फिर उसने माहौल से सीखी होती हैं. बहुत सारे लिसनर्स ने पार्टिसिपेट किया और ज़्यादातर जो वोट्स हैं वो गए हैं कि जी इंसान पैदाइशी बुरा नहीं होता है. हाँ बहुत माहौल जो है ना वो बहुत जो है ना असरअंदाज होता है. इसके साथ साथ मोहम्मद शहजाद है हमारे साथ. उन्होंने एक और भी एडिशन किया. वो कहते हैं जी जहाँ आप पावर ऑफ ज़ीरो बता रही है ना कि ज़ीरो की ताकत क्या है, वहाँ पे नौ की पावर नहीं बताई आपने. नाइन जो हिंसा है, नाइन के बाद आप 110 है, यानी कि वो हिंसे जो हैं फिर रिपीट होने लग जाते हैं. लेकिन नाइन का एक हिंसा ऐसा है जो अगर नाइन के आगे ऐड करेंगे तो 99 बनेगा, 99 के आगे फिर ऐड के 999 बनेगा, उसके आगे फिर एक नाइन ऐड के 9999 बनेगा. सो इस तरह नौ की जो पावर है कहते हैं उसको भी जुटलाया नहीं जा सकता. जनाब ज़बरदस्त क्या बात किया आपने मोहम्मद शहजाद. थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन आपने शो में पार्टिसिपेट किया. इसके साथ साथ नुमान है अगेन कहते हैं जी ना शुक्री जो है ना वो इंसान के हालात के ऊपर असरअंदाज होती है. और आपने बात बिल्कुल सही किया आरजे. थैंक यू सो मच नुमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं इसी तरह से इस चीज़ को कहूँगी, वो एक शेर में इस चीज़ को, एक दरिया को कहते हैं ना कूजे में बंद करना, बिल्कुल इसी तरह में. क्योंकि 7:52 हो चुके हैं, 8 बजे तक आपका मेरा है साथ. और शेर कुछ इस तरह से है कि मैं खुद हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मैं खुद हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है. तो जनाब जो बंदा अपने अपने साथ लॉयल नहीं है, वो अपने हालात के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो हाउ कैन यू से कि वो रॉयल ज़िंदगी गुजार सकता है, वो एक अच्छी ज़िंदगी. पैसा सब कुछ नहीं होता. हाँ हमने जो है ना एक स्टैंडर्डाइज्ड किया हुई है हर चीज़ें, और चीज़ों को सिर्फ जो पैसे की बुनियाद है उसके ऊपर टिकाया हुआ है. ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी तो लोग जी रहे हैं. अब जो बंदा देसी घी नहीं खा सकता, क्या वो मतलब खुराक नहीं सही ले रहा? बहुत सारे और अल्लाह ताला ने ऐसी नेमतें, अल्लाह ताला की अगर आप एक पेज ले लें, एक पेंसिल ले लें, और अल्लाह ताला की नेमतें, वो नेमतें जो बिन मांगे आपको मिली हैं, जैसे सेहत है सबसे बड़ी नेमत. कहते हैं जिंदगी में सबसे बड़ी चीज़ सेहत है. अगर आप देखें इतनी बिलियनियर ट्रिलियनियर बंदा है, बहुत अमीर है, लेकिन जब आप उसका खाना देखें तो आप पर सर पकड़ के बैठ जाएंगे. क्योंकि इतनी सी उबली हुई सब्जियाँ और इतने से उबले हुए चावल, बस ये खाना उसने खाना है. और उससे भी पहले वो क्या कहेगा कि जी मैंने तो दवाई खानी है. व्हाट इज दैट कि आपने अल्लाह की नेमतों की शुक्र ना नहीं अदा किया. आप अगर गिनना शुरू करें ना तो उसका इतना पैसा आप देखें कहाँ गया. बिल्कुल इसी तरह सेहत सबसे पहले आती है अल्लाह ताला की, जो बिन मांगे आपको अल्लाह ने दी है. आप खुद खड़े हो सकते हैं, खुद बैठ सकते हैं, पानी पी सकते हैं, सांस ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात. आप अस्थमा के पेशेंट्स को देखें, बहुत सारे और मैं कहती हूँ एक दफ़ा अस्पताल का इंसान चक्कर लगा कर ना वैसे ही घूम के आ जाए, बहुत दिल करे अगर आपका, तो फिर आप अल्लाह की उन फिर रिज़्क़ हलाल की एक नेमत दी आपको, फिर मसरूफियत दी. कुछ ऐसे लोग भी जिनके पास काम ही कोई नहीं, तो कहते हम क्या करें, हम तो वेले बैठ बैठ के थक गए. शुक्र किया करें कि अल्लाह ने आपको मसरूफियत दी हुई, आपके पास कोई काम है करने के लिए, आपके पास सोचने के लिए टाइम है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम कितनी मर्जी शॉपिंग कर लें, कितना ज़्यादा पैसा है हमारे पास, हम कहाँ पे इसको वेस्ट करें, कहाँ पे इसको खर्च करें. बहुत सारे लोग ऐसे मैंने ज़िंदगी में देखे. तो अगर आप लिस्ट डाउन करना शुरू करेंगे ना अल्लाह की बिन मांगे जो नेमतें उसने आपको दी, आँख दी है उसने देखने के लिए, दुनिया की खूबसूरती देखने के लिए, उसने बोलने की आपको ताकत दी है कि आप बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, आप सुन सकते हैं, उसने अच्छा सुनने की पावर दी आपको, उसने महसूस करने की हिस्स दी आपको, किस किस नेमत का शुक्र अदा करेंगे. तो नुमान आपकी बात से मैं 100% इत्तफाक करती हूँ कि ना शुक्री नहीं करनी चाहिए, ये आपके हालात के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट करती है. सो अल्लाह की वो नेमतें जो उसने बिन मांगे दी उसका शुक्र ही अदा करेंगे तो ग्रोथ कहीं नहीं जाती. जनाब वासिफ साहब से ना किसी ने पूछा था कि फैज़ क्या है. मैं अपने बिल्कुल बातों को अब समेट रही हूं कि वासिफ साहब से किसी ने पूछा कि फैज़ क्या है. उन्होंने कहा कि जिस दिन ये समझ आ जाए कि मैं कर नहीं रहा, ये हो रहा है, ये फैज़ है. ये मतलब जिस दिन आप ये कहेंगे ना मैं, आप में से मैं जिस दिन निकल जाएगी, आप कहेंगे ना मैंने ये किया है, जिस दिन आप ये नहीं समझेंगे, जिस दिन ये समझ जाएंगे कि कोई है जो करवा रहा है, कोई है जो कर रहा है। आप ऐसे यहाँ तक आ गए, कैसे? खुद आए हैं, खुद ने वो लेकर आया आपको। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे दैट मीन्स वो फैज़ है, वो शुक्र है, तो शुक्र अदा करना सीखें। शुक्र ही अदा करते रहेंगे तो नेमतों को जब आप ज़रब देना शुरू करेंगे ना, तो वो कहाँ की कहाँ चली जाएंगे। फिर चाहे आप जिस मर्ज़ी से उसे ज़रब दे लें, 9 से दे लें या 0 से दे लें। तो जनाब, इसी दुआ और इसी उम्मीद के साथ कि आपकी हर सुबह होगी खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम होगा बखैर, आप जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, अपनों के साथ रहेंगे और उन लोगों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखेंगे जो आपका ख्याल रखते हैं। उनकी कड़वी कसैली बातें सुननी पड़े सुन लिया करें, कोई बात नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में यू टर्न कोई नहीं है कि आप दोबारा उन्हें पे बैक कर सकते हैं। बस जो लाइफ चल रही है ना, उसको चलाते जाएँ, और ये लाइफ वो चला रहा है। आप सिर्फ कोशिश करें कि आपसे कहीं गलती ना हो जाए किसी के साथ, बाय मिस्टेकन या कहते हैं दानिस्ता या गैर दानिस्ता। तो जनाब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे हम अगले संडे को इंशाल्लाह 6 to 8 में और संडे स्पेशल्स में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने दुआओं में याद रखना है, और मेरे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे सारे लिसनर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत सारी दुआएं देते हैं। खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। इसी के साथ साइनिंग आउट, आरजे महावीर जैदी, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में रखिएगा याद। एक खूबसूरत सा ट्रैक प्ले करती हूँ और इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे 6 to 8। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।

0: अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं, ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं तरन्नुम हामिद
1: और शफीकुर रहमान।
0: पहले अहम खबरों का खुलासा।
1: वजीर इत्तला'आत ने कहा है कि खसूसी फ्यूल रिलीफ स्कीम के तहत अब तक 22 लाख से ज्यादा अफराद का इंदराज कर लिया गया है।
0: वजीर पेट्रोलियम ने कहा है कि आवाम को पेट्रोल की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं।
1: वजीर खजाना ने कहा है कि लॉन्ग मार्च, हड़तालों और धरनों से कौमी तरक्की के सफर में रुकावटें पैदा हो सकती हैं।
0: वजीर तवानाई ने कहा है कि बिजली के शोबे को वाहिद खरीदार मॉडल से बिजली की मुसाबकती मार्केट में तब्दील करने के लिए अहम कदम उठाया गया है।
2: This is FM 101.1
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: 101 FM.
1: All the way live from Federal Deputy Pakistan. This is FM 101.

Assalamualaikum, assalamualaikum to all of you. Welcome to the station that is Sound of the Music. I'm Gamezban Muhammad Yusuf Oliver. I'm from the federal capital city of Pakistan, the beautiful, beautiful, beautiful Islamabad. Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Quetta, Peshawar, Hyderabad, Sialkot, Multani, yani ki pura Pakistan aur Pakistan se bahir puri duniya mein radio.gov.pk par aap sun rahe hain Shining Frequency FM 101 ki. और FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान मोहम्मद यूसुफ. ठीक रात के 12 बजे तक आपका मेरा साथ रहेगा प्रोग्राम शब गप में. एक नया दिन, एक नई तारीख, एक नई एपिसोड के साथ आप लोगों के साथ साथ मौजूद हैं. बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन प्रोग्राम में. एक टॉपिक होगा जिस पर हम गपशप लगाएंगे आप लोगों के साथ प्रोग्राम शब गप में. बहुत सारे लोगों के दिलों में बहुत सारी ख्वाहिशात होंगे, बहुत सारे इरादे होंगे, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, चाहते हैं, अकीदतें, मोहब्बतें होंगी. करना आपको यह है कि इन अकीदतों को, चाहतों को, मोहब्बतों को कभी खत्म नहीं होने देना, क्योंकि जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढने से मिलती हैं. और जिंदगी में ख्वाहिश जरूर रखिएगा, ख्वाहिश को कभी मरने मत दीजिएगा. وزیر اعظم سے لے کے کشمیر بیان اسلام آباد اسٹیشن ٹیریٹری اور پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں تک ہماری آواز سنی جا رہی ہے سب کو ویلکم. اور ہمیشہ کی طرح پہلا سانگ, پہلا گانا پیارے وطن پاکستان کے نام. جہاں تک ہو سکے پاکستان کی ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کیجیے. بی پاکستانی, بائے پاکستانی, اینڈ پراؤڈ ٹو بی پاکستانی.

पाकिस्तान, हमारी जान सबसे पहले पाकिस्तान। The Pride of Pakistan, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। आजकल कुछ लाइव परफॉर्मेंसेज जो है वो खान साहब की देखने का और सुनने का दिल करता है, तो मैंने कहा आप लोगों को भी वही सुनवाते हैं, कुछ ओरिजिनल होना चाहिए।

10 बजकर 14 मिनट हुआ साथ हैं सामीन और आपका मेरा साथ रेगर श्रीगर में ठीक रात के 12 बजे तक। और टॉपिक जो है हम आप लोगों के लिए आज जो लेके आए हैं वो कुछ आजकल के हालात और वाकयात और स्पेशली पैसा जो है वो किस हद तक जरूरी है, लेकिन पैसे से ज्यादा जरूरी क्या है, पैसे से ज्यादा भी कोई चीज जरूरी है।

तो आप मुझे बता सकते हैं कि पैसे से ज्यादा जरूरी क्या है? और वैसे आजकल के दौर में तो पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है हर तरह के सुकून के लिए। कह सकते कि पैसा जिंदगी को आसान बना सकता है लेकिन जिंदगी का मकसद नहीं दे सकता। लेकिन लेकिन पैसा तो पैसा है, पैसा बहुत जरूरी है। और रिश्तेदारियां लोग मुंह परानू कर लेंगे, कहते कि ओ गरीब आया जे अभी कुछ ना कुछ मांग लेगा, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है जिसने आपको अता किया है उसके कहने पे, उसके एक तलब पे इंसान अगर मांगने पे आए तो और वो नवाजने पे आए तो

आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने इसका जवाब जो है वो आप लोगों से लेना है। कोई हमने इसकी इची बीची में नहीं जाना है, समझ गए आप। वेरी सिंपल एंड ईजी एक सवाल है, उसका बहुत ही आसान सा हमें जवाब भी दरकार है। आप लोगों के मैसेजेस 4471 पर अपने सेंड फॉर्म के क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे अपना नाम पैगाम, उस मैसेज को आपने सेंड कर देना है 4471 पर। और facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान हमारा ऑफिशियली पेज है, पेज पे पोस्ट मौजूद है, आज मौजूद है, आप वहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं। आप लोगों के कमेंट्स में साथ साथ शामिल करता रहूंगा। और आखिरी मुमकिन जरिया है आपके हमारे राबते का कि आप कॉल करेंगे 10:30 की ब्रेक के बाद। और आप लोगों के आसानी के लिए एक और नंबर भी मौजूद है, और लेकिन आपने पहले ट्राई वही करना करें, इन केस कि वो नंबर नहीं मिलता 9201103।

जिंदगी कितनी आसान हो गई। और कहते हैं मेरे ख्याल में पैसा जरूरी है, क्योंकि पैसे से हम अपनी बेसिक जरूरियात जो है वो पूरी करते हैं और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं।

किसी शहजादी मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, और मेरी तबीयत कुछ नासाज थी लेकिन मुझे पता है कि कल आपने शो, अच्छा पता भी है फिर। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टेक्स्ट मैसेज का। और पैसा बहुत जरूरी है एक जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। ओहो 10 बजकर आते हैं 20 मिनट आपका मेरा साथ रहेगा। मैं अच्छे से अच्छे साथ साथ म्यूजिक भी आप लोगों को सुनवा रहे हैं। वक्त इसलिए बताते हैं कि आप अपनी घड़ियां ठीक कर लें, क्योंकि वक्त जो है

जी माशा तो कहते कि पैसे हों तो मैं ज्वेलरी और अपनी ज़रूरत तो पूरी कर लूँगी, सिम भी तो लेनी है, पैसे होंगे तो लूँगी, कैसा है? अच्छा जी, ये सॉन्ग वैसे मुझे किसी ने सजेस्ट किया था और उसके बाद मुझे खुद इतना पसंद है और आज थोड़ी सी मैंने इस पर रिसर्च भी की है एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए, तो मैंने कहा ज़रा इस पर हम इसकी जो समझम ना हम तशरीह किया करते थे शेरों की, सिर्फ एक मैसेज है, प्लीज प्ले अल्फाज सॉन्ग, अल्फाज सॉन्ग के बाद मैं अब रेगुलरली इसको जो है वो शामिल करता हूँ और मैंने ना हर एक कह सकते हैं कि जो ईयर के हिसाब से या मंथ के हिसाब से भी कह सकते हैं आप, एक फोल्डर जो मैं बनाता हूँ डेली से उसके अंदर मैं एक स्पेसिफिक एक फोल्डर जो है वो जरूर बनाता हूँ जिस फोल्डर का नाम है स्पेशल, और ये स्पेशल फोल्डर किसी वजह से है।

0: ऐसे में फोन चार्ज को देख रहा था कि जैसे ही कॉल्स को बताया, जिस तरह नहीं लगता कि स्कूल में जब छुट्टी हो जाती है और जैसे बेल बजती है, कॉल्स का कहने का था और कॉल्स ऐसे लाइट्स जो है ब्लिंक कर रही है स्टूडियो में, जितनी मध्यम सी रोशनी है उसमें हमारी ये दो स्क्रीन्स और पैनल की लाइट्स और अब जो फोन जो है उसकी अपनी ही एक लाइट है, बल्कि लाइट्स हैं जो ब्लिंक कर रही हैं। सो देखते हैं जी कौन है, कहां से है, फर्स्ट कौन आ रहा है और क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहती हैं, जहां जहां तक ट्रांसमिशन सुनी जा रही है सबको सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: जी अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहां से
1: जी, क्या हाल है जी? ठीक ठाक, मोहम्मद शहजाद शाहबाद से बात कर रहे हैं।
0: कैसे आप? ठीक हैं, तबीयत से ठीक है आपकी?
1: हाँ, आपकी दुआएं माशाल्लाह, अच्छा प्रोग्राम, अच्छी बातें।
0: थैंक यू।
1: आपने जो मौजू रखा है ये भी अच्छा लग रहा है
0: जी, बताएं। लेकिन
1: पैसे से ज्यादा जरूरत तंदुरुस्ती होती है।
0: तंदुरुस्ती होती है? तंदुरुस्ती,
1: तंदुरुस्ती,
0: अच्छा सेहत, तंदुरुस्ती।
1: हाँ जी हाँ जी, सेहत होनी चाहिए तो फिर पैसा का मतलब काम आता है। तो जब बाय लेना ये ऐसा वक्त भी होता है, पैसा भी काम नहीं आता, इसलिए तो पैसे के जब पैसा आ जाए तो रिश्तेदार मारे जो आपन से गरीब भाई होते हैं ना, उनको नहीं भूलना चाहिए, वो भी जिंदगी के साथ जरूरी होते हैं।
0: हाँ, क्या मालूम कि अल्लाह ताला किसी के वसीले से आपको नवाज रहा हो
1: जी।
0: ठीक हो गया,
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल यही बात होती है, बहुत ये अच्छी बात है आपकी, किसी के वसीले से भी मिल जाता है।
0: हाँ, ये आपको समझ नहीं आ रही होती ना, और चले इस हवाले से मैं ऑन एयर भी बात करूंगा। और तबीयत से ठीक है आपकी?
1: हाँ, आपकी दुआएं माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा आपका मौजूद है, बहुत अच्छा प्रोग्राम, आप सबको मेरा, जितने भी आ गया थे सबको मेरा सलाम।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और लाहौर में भी हमें सुना जा रहा है तो वेलकम करेंगे लाहौर्स वल्ला हबीबी, सबको सलाम। और पैसों से याद आ गया, अब तो रिटर्न्स भी जमा करानी है, 30 सितंबर आखिरी डेट। मतलब समझ नहीं है कि इतने कमा लिए को पता ही नहीं चला, अब रिटर्न्स जमा नहीं हो रही है, सर्टिफिकेट दे दिए मैंने।

0: Hello. Thank you so much. Bahut shukriya aapki call ka. Assalamu alaikum.
1: Hello,
0: assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Ji, kaun kahan se?
1: Dua Multan.
0: Sorry?
1: Dua Multan. Kaise hain aap?
0: Alhamdulillah, theek thaak. Allah taala ka bahut karam hai. Ji, kya kehna chahengi aap?
1: Main kehna chahungi ek to zindagi bahut zaruri hai.
0: जिंदगी बहुत जरूरी है. अच्छा,
1: और दूसरा वक्त बहुत जरूरी है.
0: सेहत बहुत जरूरी है. आजकल सेहत के हवाले से मैं बड़ा कॉन्शियस हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त बड़े बीमार हैं इस वजह से.
1: अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे.
0: आमीन आमीन.
1: तीसरा, तंदुरुस्ती बहुत जरूरी है. अगर आपके पास ये तीनों चीजें नहीं है, आपके पास पैसे भी हैं तो क्या फायदा, अगर आपके पास अपने लिए वक्त नहीं है तो क्या फायदा, और दूसरा आपके पास सेहत है तो उस पैसे का भी क्या फायदा जिससे आप
0: लेकिन बंदा ट्राई तो कर सकता है. बंदा अगर पैसे ना हो तो सेहत, फिर आप ये क्या कहते हैं वो जो मेडिकल स्टोर से कुछ खाली स्ट्रैप्स मिल जाएंगे, आप उसी पे गुजारा कर सकते हैं. किसी अच्छे हॉस्पिटल आप नहीं जा सकते हैं.
1: जी, ये तो है.
0: तो,
1: लेकिन देखिए, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसी बीमारी होते हैं, अमीर से अमीर होते हैं, लेकिन उनके पास इलाज, वो कहते हैं जितने मर्जी पैसे ले लें, लेकिन नहीं हो पाता.
0: हाँ, वो अब अल्लाह की तरफ से अब ऐसी आजमाइश हो आप पे. लेकिन मैं बारह इसी चीज़ पे फोकस करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने आपको अता किया है तो उसमें जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका हक होता है और हम समझते नहीं हैं.
1: जी,
0: तो सही. और कुछ कहना चाहेंगी आप? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. 051-111-0101. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम, क्या
0: हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं आप? ठीक है. आपका नाम? सायरा. सायरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं,
2: अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह.
0: जी, क्या कहना चाहेंगी आज के टॉपिक के हवाले से? पैसे से ज्यादा जरूरी क्या है?
2: पैसा जरूरी है. इसके बाद ये है कि पहले आपकी सेहत होगी, जिंदगी होगी, फिर आपके पास पैसे आएंगे, फिर पैसे अपने आप पे भी लगाएंगे. सबसे बड़ी चीज जो है वो आप ऐसे लोगों को जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो पैसे के बगैर भी है, ऐसे बहुत नहीं है.
0: ऐसे सब्र शुक्र,
2: सब्र शुक्र उनमें इतना है. वो कहते हैं कि जो टाइम गुजर गया अगले की खुदा देखेगा, खुदा देगा, अभी का हमें मिल जाए. ऐसे भी लोग हैं. बाद लोगों के पास अनगिनत बेशुमार पैसा होता है, लेकिन कुछ ऐसी डिजीज होती है कि वो उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते. रोटी की जगह उन्हें फिर नहीं खा सकते. वो गंदम से जो निकलता है ना बुरा, वो कहते हैं वो यूज करो,
0: चोकर.
2: तो चोकर, हाँ जी, तो वो यूज करो. तो ऐसा पैसे को क्या करना है अगर आपकी सेहत नहीं है? आप अपने लिए कोई अच्छी चीज खा नहीं सकते हो. पहले ये है कि हमारे पास जब पैसा है तो हमारा काम बनता है कि अपने भी हम लगाएं जरूर, लेकिन दूसरों को देखे तो फिर पैसे का तभी मजा है.
0: ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है. क्या हो गया, चुप कर गई आप?
2: मैं चुप हो गई. आपका शो बहुत जबरदस्त है. जबरदस्त किस्म के टॉपिक लेके आते हो, मजा आता है.
0: अच्छा,
2: आप होते हैं हमारा भी टाइम अच्छा गुजर जाता है.
0: हाँ, हम अच्छे टाइम पास है ना.
2: नहीं भाई, अच्छा लगता है. शोर लगा रहता है, कहते शोर मेला, क्या कहते हैं उसको.
0: जी जी जी, ठीक हो गया, सही हो गया.
2: अल्लाह ताला आपको सेहत वाली जिंदगी दे.
0: थैंक यू,
2: और अच्छे अच्छे कॉलर आए,
0: बहुत शुक्रिया.
2: खाने वाले ना आए.
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया. कभी लंघया तू गला कोई ने, और कोई भी नहीं, या ते तू ही है, गला दो ही ने, और कोई भी नहीं, याते तू ही है, या आप थे, कोई नहीं.

0: कुछ मजीद कॉल वक्त हुआ ज्यादा 10:41 और आपका मेरा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में ठीक रात के 12 बजे तक। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम यूसुफ भाई, कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, तारुफ करवा दे, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
1: ये मलक इरफान बात कर रहा हूँ, मंडी बालदीन से।
0: कैसे हैं आप? ठीक हैं?
1: बस आपकी दुआओं का तलबगार हूँ, वही चीज मुझे भी चाहिए जो लोग कह रहे हैं ना, तो वही मुझे भी चाहिए। तो मेरी चीज, मेरी तो नजर में ना तीन चीजें हैं पैसे से बढ़कर।
0: जी बताएं।
1: सबसे पहले तो माँ,
0: वालदैन, ठीक हो?
1: अगर घर पे माँ नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। अगर आपकी सेहत भी ठीक नहीं है, जब वो गोद में आपको लेके कहेगी कि अल्लाह ताला रहम करेगा,
0: बेशक ऐसे ही।
1: तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत कामला भी अता फरमाएगा। क्योंकि मेरी माँ नहीं है ना तो मैं अब उसको तरसता हूँ। माँ के साथ साथ सेहत भी नहीं है तो तीसरा मेरे नंबर से दूसरा है कि दोस्त। अगर आपके पास अच्छा दोस्त है ना तो आपके पास दुनिया की दौलत है कि रात 2 बजे भी उसको कॉल करेंगे कि वो हाजिर हो जाएगा।
0: अच्छा,
1: तो पैसे पास हैं तो भाई किसी को कहेंगे यार मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, मुझे मेरा ये काम कर दो, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं यार मेरा अभी टाइम नहीं है। लेकिन अच्छा दोस्त होगा वो टाइम निकाल कर भी आपके काम आएगा।
0: सही कहा आपने।
1: तो तीसरा दोस्त जेड़ा मेरी नजर में है वो मतलब औलाद होती है, अल्लाह की नेमत जो होती है ना तीसरी। ये तीनों चीजें हो ना तो पैसा कम भी हो तो गुजारा हो जाता है।
0: सही, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं पैसा भी इसमें भी इन्वॉल्व, कहीं ना कहीं पैसा इसमें भी इन्वॉल्व होता है, पता है आपको?
1: हाँ वो बेशक ठीक है, पैसा हो तो है, लेकिन यूसुफ भाई पैसे के बगैर गुजारा हो सकता है? पैसे से किसी से मांगा भी जा सकता है,
0: वापस भी तो देना, वापस भी तो देना है ना। मांगे तो जा सकता है, एक बार कोई देगा, दो बार देगा, उसके बाद उन्हें भी कहना अल्लाह हाफिज।
1: यार पैसा तो वैसे भी मैं अगर कहूँ यूसुफ भाई खुदा के लिए मुझे 1000 रुपया दे दें तो आप शायद दे देंगे, लेकिन सेहत अगर मैं कहूँ तो वो अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं दे सकता।
0: नहीं, अगर 1000 रुपए से आपकी सेहत ठीक होती है मैं आपको 2000 रुपए देता हूँ।
1: मेरे लिए आप सिर्फ ना, मुझे पता चला है पहले तो मतलब नहीं, आप ना एक वो स्पेशल है जिन लोगों की अल्लाह ताला दुआ रद्द नहीं करता। मैंने यकीन करें आपको सिर्फ इसलिए कॉल की के जब भी दुआ के लिए हाथ उठाए मलक इरफान का नाम लेकर दुआ करें। यकीन करें मैं सब बारजिस के लिए दुआ करता हूँ।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लेकिन बस अल्लाह ताला सब पे रहम करे, कोशिश तो ये होती है हर नमाज के बाद दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला
1: ये जो दुआ है ना यूसुफ भाई, ये भी बहुत कीमती तोहफा है जो यकीन करें मतलब घर बैठे हम एक दूसरे को दे सकते हैं।
0: सही, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और मर्शद मौजूद हैं जी मरीज से। सर आदाब अर्ज है, पैसा जरूरियात जिंदगी है।

आज के प्रोग्राम में टॉपिक हमने जो रखा वो ये है कि पैसा, पैसे से ज्यादा जरूरी क्या है। आप हर चीज से ज्यादा जरूरी हैं, हमसे भी ज्यादा जरूरी हैं।

0: जी होप सो के आप सब फैमिली सुन रहे हैं, स्माइल कैसे हैं, वो ठीक हैं और अच्छा आज आपका ऑफ है और आप सुन रहे हैं दानियाल, छोटी फिजा हमारी, सब ठीक ठाक खैरियत है। मजीद आप लोगों की पार्टिसिपेशन को साथ से शामिल करेंगे। एंड जस्ट इन केस यू फॉरगॉट, एंड माय नेम इज मोहम्मद यूसुफ, पैसे से ज्यादा जरूरी क्या है हमें बताएं ना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहां से, तारुफ करवा दें।
1: जी सर जी, फारूक बात कर रहा हूँ, पिंडी रोड चकवेली खान रात इस्लामाबाद। क्या हाल है, ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे टॉपिक के हवाले से, क्या जरूरी है
1: टॉपिक सर जी, क्या है जरा बता दो।
0: आप दोबारा कॉल करें, सुने और उसके बाद आइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी सुनने का कि मैंने आपको स्पेशल टॉपिक बताना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहां से? सॉरी,
2: सिदरा कुरैशी मंदरा से।
0: सिदरा कुरैशी मंदरा से, कैसी हैं आप, ठीक हैं?
2: मैं ठीक हूं भैया, सुनाए ठीक है, तो भैया ठीक
0: है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। क्या कहना चाहेंगे टॉपिक के हवाले से? रिश्ते पैसे से ज्यादा रिश्ते जरूरी हैं।
2: बिल्कुल।
0: हो सकता है ऐसा कि पैसे से ज्यादा जरूरी हो रिश्ते?
2: जी भाई, देखे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ।
0: जी दें दें।
2: मेरे पास अल्लाह का शुक्र है किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे भाई की कमी है और वो मैं आप लोगों से पूरी करती हूँ।
0: अच्छा,
2: तो मुझे लगता है रिश्ते जरूरी है, चाहे फिर बाप का हो, माँ का हो, बहन का हो, भाई का हो, बेटे का हो, कोई भी रिश्ता हो भैया, तो मेरे ख्याल से पैसे ज्यादा जरूरी है।
0: पैसे से ज्यादा रिश्ते जरूरी हैं।
2: जी बिल्कुल।
0: अच्छा चले मान लेते हैं। जी उमर भाई आप बताएं जरा इस हवाले से, हम अपने जो हमारे बड़े भाई हैं उनसे पूछते हैं कि पैसे से ज्यादा क्या जरूरी है, ठीक है?
2: जी भैया।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने हमें कॉल की है। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मैंने अपनी आंखों के सामने देखी हैं और

जब आपके पास शायद के वो वक्त जो है वो इतना तेज नहीं था, इतने रिसोर्सेज नहीं थे या इतनी जरूरियात नहीं थी हमारी, बहुत कम रिसोर्सेज में भी हमने बहुत अच्छी जिंदगी, जो स्पेशली हम लेट एटीज या अर्ली नाइन्टीज की जो जनरेशन है उनकी अगर मैं बात करूं तो ना इंटरनेट था, ना ये कंप्यूटर्स थे, मोबाइल फोन नहीं थे, बाकी आपको अपने एंजॉयमेंट के लिए हमने वो बंटे भी खेले हैं, हमने वो वीडियो गेम्स खेलने के लिए हमें बड़ा दूर जाना पड़ता था। क्रिकेट हमने खेली है, वो क्या फुटबॉल हमने खेला है, गुल्ली डंडा हमने खेला हुआ है, लेकिन आजकल की जनरेशन को शायद इन चीज़ों का पता भी नहीं होगा ये क्या होता है। अभी आपने वो बंदर किला खेला है, वो भी खेला। इवन के जो आपकी ये माचिस की जो डिबिया होती है ना, एक तो उसके अंदर एक स्टोरेज केस होता है जिसके अंदर वो सारी तीलियां होती हैं, एक उसके ऊपर जिसके ऊपर वो एक मसाला सा लगा होता है ना, उसको निकाल के उसको बिल्कुल फ्लैट करके उसको ना किसी चीज से प्रेस करके सही तरह से, और एक बड़ा बॉक्स सामने रखे उसको हम हिट करते थे। ऐसे ही है।

रिश्ते बहुत जरूरी हैं जिंदगी में, लेकिन एक सच भी कह सकते हैं उसको, कड़वा सच भी कह सकते हैं कि पैसा बहुत जरूरी है इन सब के लिए। कुछ पार्टिसिपेशन शामिल करते हैं मजीद आप लोगों की कॉल्स के जरिए 0511100101 and 051। कोई पता नहीं कौन है कहां से, लेकिन मैसेज है कि परवरिश एंड तरबियत जो है वो बहुत जरूरी है।

0: देखते हैं कौन है, कहाँ से हैं हमारे साथ और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड तैमूर चकवाल।
0: तैमूर चकवाल,
1: यस
0: अच्छा कैसे हैं आप? ठीक हैं?
1: फाइन प्लस अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। आप सुनाए आप कैसे हैं? और पहली दफा आपको कॉल मिलाई और बहुत ज्यादा खुशी हुई।
0: थैंक यू सो मच। प्लस अल्हम्दुलिल्लाह।
1: आप मतलब है कि मैं बैठा हुआ तो मैं रात के प्रोग्राम ही सुनता, दिन को तो सुनता हूँ, लेकिन आपकी आवाज ने मुझे और आपकी क्वेश्चन ने मुझे जो है ना मजबूर कर दिया।
0: मजबूर कर दिए, मजबूर ना हुआ करें, हम मजबूरियों के वो नहीं हैं। आप सही खुल के तारीफ करें।
1: भाई हैं, कोई मसला नहीं, मैं तो सुनता रहता हूँ वैसे भी।
0: अच्छा,
1: मैं तो सबसे पहले वो बात ये है कि जब जिंदगी होती है तो पैसे भी आ जाते हैं, और सबसे जो बड़ी बात है बात को मुख्य करने के लिए जितनी भी सुन रही है सबको सलाम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सुकून सबसे जरूरी है,
0: सुकून सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी ज़िंदगी में, और सेहत भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे दोस्त जो हैं, हमारे भाई हैं, हमारे जिगोर जो हैं, वो अमजद भाई, अल्लाह ताला उनको सेहत, उनका ट्रीटमेंट जो है अब स्टार्ट हो चुका है। मैं लास्ट जब उनसे मिल के आया था, कुछ बेहतरी जो है वो नज़र आ रही है उनकी सेहत में। तो आप सब लोग भी जो है वो दुआ किया करें अमजद भाई के लिए, और अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के सुनने का। मोहम्मद ज़ियाउल्लाह खान फ्रॉम मियांवाली, मोहम्मद यूसुफ साहेब। वैसे अगर एक बार चला जाए तो दोबारा वापस लौट के आ सकता है बंदा? जब मरने वाला हो और उसकी रूह निकलने वाली हो तो वहाँ क्या चीज़ ज़रूरी होती है? ईमान। बेशक जी, बहुत अच्छी बात है। अब इस सॉन्ग को भी इंजॉय कीजिए, मैं वापस आऊंगा सॉन्ग ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस के बाद। प्रोग्राम शब कप में आपका मेरा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में 12 बजे तक। पैसे से ज्यादा जरूरी क्या है, ये आज का टॉपिक है, स्पेशली जिन लोगों ने अभी हमें ट्यून इन किया है। नाची इसको मोहम्मद यूसुफ कहते हैं, आपको क्या कहते हैं जरूर बताइएगा।

ओके जी, वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों के सुनने के। इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप लोगों के फेसबुक के कमेंट्स शामिल करेंगे सबसे पहले। मुल्तान से थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नज़ीर खोसो हैं सोबतपुर बलोचिस्तान से, ताल्लुक है आपका। अब रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं जी, थैंक यू सो मच। और लतीफ सेंसर गुवाहाटी गोट कराची से, अमर रमेश कुमार खत्री, टेल मास्टर कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद अमीन हफीज जफर, सादिक शेख और शंकर गुल शर्मा वीरानी वाले, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप सब लोग सुन रहे हैं। रेहाना खान बकर से हमारे साथ मौजूद हैं। मिसेस सईद मलिक हैं, अस्सलाम वालेकुम यूसुफ, खुश आमदीद, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सदा सलामत रहो। और आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, कहते हैं पैसे से ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में सुकून, इज्जत, सेहत और रिश्ते ज़रूरी हैं। अगरचे पैसा ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अहम ज़रूरत है, लेकिन दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पैसे से ख़रीदा नहीं जा सकता। उस्मान अज़ीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। टॉपिक बहुत अच्छा है, पैसा ज़रूरत पूरी करता है, बस इज़्ज़त और इज़्ज़त तो अल्लाह ने देनी है, पैसे से ज़रूरी रिश्ते हैं सर। इंतज़ार सॉन्ग लगा दें प्लीज़ जी, कोशिश करते हैं। अब इंतज़ार किसका है ये मालूम नहीं है कि सॉन्ग किसने गाया इंतज़ार। सईद कहती है कि आप सबको फूलों भरा मोहब्बतों भरा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी नबील अहमद, हम भी आपको सुन रहे हैं इटली से, सदा खुश रहें, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। या अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद। मोहम्मद हफीज़ रहमान बखर से जी हमारे साथ मौजूद हैं, ईदगाह जनूबी बखर से मोहम्मद हफीज़ रहमान, हबीब मलिक खलील मलिक अली रहमान मुल्तान से, बल यासिन नाज़, वेलकम टू द शो।

नाराज ना थीवे तेहे गाला खा, नाराज ना थीवे तेहे गाला खा, तेरे नाल मोहब्बत थी गई है।

जब देख लिया हर शख्स यहाँ हर जाई है, इस शहर से दूर एक कुटिया हमने बनाई है और उस कुटिया के माथे पर लिखवाया है सब माया है।

क्या कमाल की प्लेलिस्ट होती है आपकी, और कैसे ये वक्त गुजर जाता है इसका बिल्कुल आइडिया नहीं होता। अच्छा कुछ अच्छे अच्छे लोग भी हमें सुनते हैं, उनकी सोबत का भी असर हो जाता है।

0: कुछ वक्त कम है, फिर हमें बढ़ना है एक म्यूजिकल ब्रेक, सॉरी म्यूजिकल ब्रेक नहीं, हमें एक टाइम से ब्रेक और उसके बाद हमें स्पेशल सेगमेंट की तरफ से कुछ कॉल्स हैं उनको साथ से शामिल कर लेते हैं। काफ़ी देर से जो हमारा फ़ोन है वो भड़क रहा है और कह रहे कि कॉल्स आ रही हैं 0511111001 और टॉपिक है प्रोग्राम में के पैसे से ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो आप लोगों के कॉल्स को साथ से शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से?
1: अनीला फ्रॉम लोहा, कैसे हैं सर?
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह ताला का बहुत करम है। क्या कहना चाहेंगे टॉपिक के हवाले से?
1: पहले तो कहूंगी कि प्लेलिस्ट पर ये जो होती है आपकी हमेशा
0: अच्छा,
1: बड़े बड़े खूबसूरत गाने चुन के लाते हैं।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और टॉपिक पे कहूंगी कि पैसे के साथ साथ पैसा तो जरूरी है ही,
0: सिक्के भी जरूरी है,
1: सॉरी
0: ठीपे भी चाहिए ने, पैसे नोटा दे नाल
1: भी आते जाते रहने ने ना।
0: अच्छा
1: कभी कभी जब स्टोर से कुछ लो तो वो ठीपे की जगह गोलियां दे देते हैं, टॉफियां दे देते हैं।
0: हाँ, 5 रुपए खुले नहीं है, माचिस ले जाओ या टॉफी ले लो।
1: टॉफियां ले लो।
0: हाँ, हम भी उसी दौर में हैं, हम भी
1: ऐसी कम्युनिटी में। भी जरूरी है
0: एहसास।
1: हाँ, एहसास अगर हमारे अंदर बाकी रहे ना जमीर की आवाज को सुनते हुए तो मेरा ख्याल है वो बहुत जरूरी है। उसके बाद ही पैसा, फिर आपको खुद ही समझ आ जाती थी कि पैसे को क्या किस तरह हम इस्तेमाल करें। लेकिन पहले ये कि जिंदगी के साथ एहसास जरूरी है जिंदगी में। पैसा तो नो डाउट के उसके बगैर तो बहुत सी चीजें नामुकम्मल होती है ना। आजकल तो किसी ने हंस के मिलना भी है तो पैसा लाजमी है ना। किसी दुख मंडन जाना तो उसे भी पैसा जरूरी होता है।
0: ऐसे ही है, ठीक हो
1: गया। ऐसे ही है। बाकी नेवर माइंड यूसुफ, मुझे ये बताए
0: अमजद? अमजद मेरे दोस्त हैं, मेरे बचपन के बड़ी हैं और इस वक्त एक सीरियस किस्म की जो है वो बीमारी के साथ लड़ भी रहे हैं। अल्लाह ताला उनको शिफा भी दे और जल्दी वो सेहत याब हो जाएं।
1: आमीन आमीन। अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन। और मैं काफी आपके शो सुन रही हूँ ना, तो ये कुछ दो शो से मैं सुन रही हूँ ये कि मतलब आप बता रहे थे तो मुझे ये नहीं शोर हो रहा था कि मतलब मैं समझ कोई आरजे हैं जो पहले कभी काम करते हैं शायद रेडियो पे।
0: हाँ, मेरे सारे जितने सर्कल में आरजेज हैं ना वो उनको जानते हैं सब।
1: अच्छा।
0: और उनका मैंने एक ना स्पेशल नाम के साथ ना एक उनका उनकी सेहत के हिसाब से ना मैंने उनका नाम रखा था तीली, अमजद तीली। बहुत कमजोर से थे ना, तो मतलब वो पूरे भाई जितने भाई हैं ना वो सारे मुझे लगते हैं वो उनका वेट, उनकी हाइट, उनकी सेहत जो है ना फिजिक एक ही जैसी है।
1: अल्लाह ताला उन्हें अच्छी सेहत के साथ जिंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए, अपनी अज़मान में रखें। उनके साथ
0: एक बड़े मजे की बात है उनसे रिलेटेड, ये ना उनके जो भाई हैं ना उनकी डिग्री कहीं कैंसिल हो जाए।
1: अल्लाह आपको भी सलामत रखे, अच्छी रौनक लगाते हैं अच्छी
0: गुफ्तगू
1: के साथ।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी।
1: अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी। और मुझे अचानक से बात याद आ गई, इनके छोटे भाई अहमद वो थे। अच्छा, उमर भाई इजाजत दे शामिल कर सकता हूँ? उमर भाई बड़े हैं ना सबसे, तो फिर उनसे इजाजत देना बनती है। चलो, जब तक उमर भाई का मुझे मैसेज आता है ना, वो अहमद वली जो उसकी डिग्री कंप्लीट हुई थी ना, अच्छा जी कह रहे हैं इजाजत है। तो मैं कह रहा हूँ कि अहमद की डिग्री ना कैंसिल हो जाए। अच्छा जी, हुआ ऐसे कि अहमद भाई जो है वो ड्यूरिंग अपने सेमेस्टर के ना वो चले गए बाहर, अब्रॉड चले गए हैं। और अमजद की और जो अहमद है उनकी जो फेस रिसेम्ब्लेंस है ना बहुत ज़्यादा है। तो अमजद भाई जाते रहे हैं जी अहमद भाई की पेपर्स देने के लिए और अहमद भाई अब्रॉड और उनकी डिग्री मुकम्मल हो गई, जबकि अमजद की अपनी डिग्री जो है वो पेंडिंग रह गई। ऐसे ही है उमर भाई।

जो है वो भाइयों में बड़ी कॉमन सी चीज है, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि किसी के कपड़े किसी नूं आ जाते, किसी की जुत्ती कोई पा के चला जाता, कोई पता नहीं। किसी के पेपर कोई दे रहा है, पास कोई होर हो रहा है, कोई समझ नहीं आ रही है।

ओके जी, आपको वेलकम करते हैं स्पेशल सेगमेंट ओले गोली नंबर्स के साथ। और कुछ आपकी पसंद और इसमें कुछ हमारी पसंद, और ये सिलसिला हम लेके चलते हैं 12 बजे तक। आप भी अपनी पसंद का कोई शेर हमें लिख के भेज सकते हैं मैसेजेस के जरिए और फेसबुक पे के पेज पे। क्या फर्क समझिए जरा, आप महंगे हैं और हम कीमती हैं।

कि जो दिल मांगा तो वो बोले के ठहरो याद करते हैं, जो दिल मांगा तो वो बोले के ठहरो याद करने दो, जरा सी चीज थी हमने खुदा जाने कहाँ रख दी।

कि अगर आप एक ऐसे शख्स को चाहते हैं जैसे आप रोज़ नहीं देख सकते, जैसे आप मिल नहीं सकते, जैसे आप रोज़ बात नहीं कर सकते, तो समझ आना कि आप उस शख्स की रूह से मोहब्बत कर बैठे हैं।

ਸਭ ਮੁਕਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਕਿਰ ਦੁੱਖ ਕਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਲਾ ਖਤਮ ਸਲਾਮ।

मोहब्बतों में कुछ ऐसे भी हाल होते हैं, खफा हो जिनसे उन्हीं के ख्याल होते हैं, चलते रहते हैं जहनों में वसवसों की तरह, हसीन लोग भी जान का बवाल होते हैं।

तेरी तरह मैं दिल के जख्म छुपाऊं कैसे, तेरी तरह मैं दिल के जख्म छुपाऊं कैसे, कि तेरे पास तो लफ्जों के जाल होते हैं। बस तू ही सबब तो नहीं उदासी का, तरह तरह के दिलों को मलाल होते हैं।

सयार रात में जलते हैं जुगनुओं की तरह, दिलों के जख्म भी मौसन कमाल होते हैं, कि मोहब्बतों में कुछ ऐसे भी हाल होते हैं, खफा हूँ जिनसे उन्हीं के ख्याल होते हैं।

जी प्रोग्राम में सिर्फ जो टॉपिक्स होते हैं आप लोगों की पार्टिसिपेशन के लिए होते हैं कि आप लोग गाएं, आपके पास कोई बात करने के लिए वजह होनी चाहिए, कोई जिससे हम बातचीत कर सकें। सब कुछ ज़रूरी है ज़िंदगी में, कोई भी चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं जा के रिलेट कर जाती है।

कि पैसे से ज्यादा जरूरी क्या है। पैसे जरूरी जरूर है, लेकिन सुकून, सेहत, अच्छे रिश्ते, वक्त पैसे से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। एक लाइन में इस टॉपिक को हम वाइंड अप करेंगे कि पैसा जिंदगी को आसान बना सकता है, लेकिन जिंदगी का मकसद

कि क्या किसी इंसान की रिप्लेसमेंट हो सकती है पैसा? क्या जो आपने एक एक पल गुजारा हो किसी के साथ, मैंने जिंदगी में कभी भी इस चीज को ओके

सा दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने। एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया किसे खोया हमने।

और जब सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमान में हैं और जो जमीन में हैं सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, मगर वो जिसको अल्लाह चाहे। फिर दूसरी दफा फूंका जाएगा तो फौरन सब खड़े होकर देखने लगेंगे।

जो बुरे काम करेगा उसको बदला भी वैसा ही मिलेगा और जो नेक काम करेगा मर्द हो या औरत और वो साहिब ईमान भी होगा तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे वहाँ उनको बेशुमार रिस्क मिलेगा।